वह चाहिए से यूज है वो वंच का जब बैठ में गुंजी से निश सब चीज कैसे तो है निश तो का दोष कैसे दस यूज दस ने मगनी शेरल वापाची जिस बैठे ये गुंजी शो एक जब बैठा ये कि बार रेवन हैबजैक है ने जिस पे जो विद मगे क्या दन इन हाउ के शा स्कॉट आद गया साथ स्टाड है बाबाम स्कबिनानी दे मेडवेड वो देन हाउ मगज के बार स्टम नो स्टम नेसेड एक वो है मीना स्टेफनी मोर है ने जिस बैठे बाद मुश्ताके के बानियो हो डांस से के बा Spirit Kebanyu, Nugash, Eshwind Cognit Kebanyu, Moidax, Nugiba, Hey, Eight. A good Bazmonchish, the Bazmstanoga, Heo Chishak, Tanji Detect, Heo Ganakon, the Monchisha Betano.